जान फुल के लड़के बोले ओ फाकी लखनऊ वाले कह दे क्या अदाब है पटना तक घूम बच्ची तेरी यादों की तू चले तो लगी आइटम ब्लास्ट की।